0: खड़खड़ाने वाली, खड़खड़ाने वाली क्या है और तुम क्या जानो कि खड़खड़ाने वाली क्या है? वो कयामत है जिस दिन लोग ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए परवाने और पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जैसे धुनकी हुई रंग बिरंगी ऊन। अब जिसके आमाल के वजन भारी निकलेंगे वो दिल पसंद ऐश में होगा और जिसके वजन हल्के निकलेंगे उसका ठिकाना हाविया है। और तुम क्या समझे कि हाविया क्या चीज है? वो दहकती हुई आग है। आमीन।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो, उधर दारा।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।

के हो तो आवाज भी सिंपली है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंपली आवाज।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: इट्स 9 AM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: ईरान ते आज जो हमलो तय थियल हो रोको पो है, संजीदा गालियों जारी आन। अड़ो मुआदो चाहूं था जो न रुगो अमरीका पर विच ओभर समेत समूरन मुल्कन लाय कबूलियत जोगो हो। मुआदे की अहम गाल है तो ईरान कें भी किस्म जहा एटमी हथियार न ठाण की खातिरी कराए, मुआदो न थियण की सूरत में फौज के तैयार रहने को हुक्म दिनो है।

जवान ब्रिगेडियर जनरल अबू फसल शिकारची चयो आहे त ईरान ख़िलाफ़ नई जारियत जो जवाब फैसलाइतो ऐं तबाह कंदड़ हूंदो। पाकिस्तानी सालसी ज़रिए अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि त ईरान अमरीकी तजवीज़ुनि ते जवाब ॾेई चुको आहे। यूएई समेत खिते में मौजूद कंहिं मुल्क सां दुश्मनी न आहे। ईरानी परडे॒ही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान यूरेनियम जे रिचा बाबति पंहिंजे हक़ तां हथ न खणंदो, नई मामले ते कंहिं सां ॻाल्हियूं कंदो। ईरान जा जंग जे ख़ात्मे लाइ मुतालबा वाज़े आहिनि। यूएई खे कुझु महीननि जे वाकियनि खां सबक़ सिखणु घुर्जे। आमनाए हुरमुस बाबति ईरान जा ओमान ऐं ॿियनि सां राब्ता जारी आहिनि।

0: पाकिस्तान में मुकर्रर सऊदी सफीर नवाब बिन सईद जी नायब वजीर आजम एहसान डार से मुलाकात बदरफन लागापन समेत खिते की सूरत हाल से गालू मौजूदा सूरत हाल में थन्दड़ अखबराई से गौर भी किया वो सऊदी सफीर पारा खिते में अमन के क्याम लाए पाकिस्तानी कोशिश की बात कहा। भारत पैरी शिकस्त का ही बाहर ना निकतो बीहर ललकार तो भारत की जोग्राफी तब्दील कर खेस तारीख जो हिस्सो बनाए छदीदी दिफारे वजीर फौज आसिफ चो है अमेरिका इसराइल में बीहर जंग जो इम्कान है बई मुल्क जंग नथा चाहन 28 तरमीम जरिए अड़ी तरमीम के खत्म करण वालू गाल सोचो है। वजीर आजम की सदारत हेठ तरक्याती बजट बाबत इजलास अंदड़ साल के तरक्याती बजट वार मनसूबन जो जायजो वरतो वो इजलास में इंदड़ साल की तजवीज कल तरक्याती मनसूबन ए फंड्स से भी ब्रीफिंग कौमी नोयत के पानी जखीरन ए बिजली वार मनसूबन से भी इजलास के आगाही डी वही। वजीर आजम शहबाज शरीफ चो तो बेहतर कारकर्दगी डेखारींदड़ वजारत के बिना देर बजट जारी कई वे पानी जहा जखीरा वधायण वार मनसूबन के तरजीह डी वे। IMF जो पाकिस्तान का सेल्स टैक्स जो हर टैक्स में हर किस्म की छूट खत्म करने जो मुतालबो 430 अरब रुपये जहा नवा टैक्स लगाने की भी तजवीज दी छी जरिये मूजिब IMF मिशन जो पाकिस्तानी अख्तियार से बजट से गाल अज आखिरी डी है। IMF सेल्स टैक्स से छूट खत्म करने जो मुतालबो कन्दे 22.8% में घट है 18% करने की तजवीज डी है। एनफोर्समेंट की मद में भी 778 अरब रुपया रखने जो चयो है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: क्या देख रहे हो,
4: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
3: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह वल्द हजरत मौलाना सैयद हौसल महाब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। 13 से 19 अप्रैल 2026 में जो इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे, मेरी दरख्वास्त है तमाम वालदीन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
4: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
3: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
7: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
4: तो भाई

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। पाकिस्तान में 13 अप्रैल से एक इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पर काबू पाया जा सके।
3: माँ खाधो गरम करे थी बैठा।
4: पुद्र थकल थकल पी लगी घड़ी, खैरियता?
3: तवा जो पुट सुमई नथो पूरी रात, माँ तो खीर प्यारे प्यारे थकी थी पवा।

0: हे वट एडियो शयूं खांदी कर सेहत ठीक रांदी
1: तमा खाओ
0: ना ना तू खा तू ना खांदी ते मा के खाइंदम
2: तेरा ख्याल मेरी जिंदगी का सबसे
3: खीर पियारण वारी माओ जी बेहतरीन गिज़ा बा ऐं बार इन्हीं जो हक है ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
0: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
1: सुनी।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10 AM. This time check is brought to you by
3: Bankal Habib, रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ। NIC शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: GA FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
1: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness. Chamak aisi diamond skin jaisi. Hemme Diamond Glow Bleach Cream.
2: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 पोलियो की मुहिम आने वाली है। इसमें मैं वालदान से दरखास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
5: Yeah!

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: संगम देखिए नया ड्रामा सीरियल पागलखाना 29 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। चेहरे से 19 अप्रैल तक 2026 में जो इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे, मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 11 AM. This time check is brought to you by
2: Bankal Habib, Rishta Bharose Ka.
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.
4: ट्रंप जो सऊदी अरब, कतर ए यूए की दरख्वास्त ईरान ते हमलो रोकने जो ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप चाहे तो सऊदी अरब के वली अहद, कतर के अमीर, कतर अरब इमारात के सदर ईरान ते हमलो रोकने की दरख्वास्त कई है। ईरान ते अज हमलो तय थियल हो, जो रोको वो है। संजीदा गालू जारी आन। अड़ो मुहिदो चाहूं था जो न रुगो अमरीका पर विच ओभर समेत समूरन मुल्क कबूलियत जोगो हो। मुहिदे की अहम गाल यह है तो ईरान कें भी किस्म जटमी हथियार न थे की खातरी कराए। अमरीकी हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई ला ईरान पूरी तरह तैयार। ईरानी खातम लंबिया ब्रिगेड चवण आए तो बीहर हमलो किया तो ईरानी फौज ट्रेगर दबाण लाय तैयार है। तकड़ी फैसलाते ताकतवर वे पैमाने जवाबी कार्रवाई कई वेंदी। ईरानी अवाम की हर सतह से दिफा यकीनी बनाया वेंदो।

अमरीका ईरान सां ॻाल्हियूं बहाल करण लाइ पंज शर्त रखी छॾिया। अमरीका जो ईरान खे जंग में थियल नुक़सान जो मुआवज़ो ॾियण खां इनकार। 400 किलोग्राम बचाव थियल यूरेनियम हवाले करण जो मुतालबो। ईरान खे रुगो हिकु एटमी ठाक खे फाल करण जी आछ। ईरान जे ज़ब्त कयल असासनि मां 25% जारी करण खां बि इनकार। पारस न्यूज़ एजेंसी मूजिब ईरान शर्त क़बूल करे बि वठे तॾहिं बि अग्रई जो ख़तरो रहंदो। ईरान जो मौक़िफ़ आहे त समूरनि जंगी कार्रवाइनि ऐं पाबंदियुनि जो ख़ात्मो कयो वञे। अबन हुरमस ते ईरान जे हक़ खे तस्लीम कयो वञे। ऐं सिंधड़ी भरिसां पसंद जे परणे तां पलान में अगवा कयल टे निगरियूं बाज़ियाब। पुलिस मूजिब ॻोठ बाज़मरी में कार्रवाई करे टिनी निगरनि खे बाज़ियाब करायो वियो। निगरनि खे ॿ ॾींहं ॻोठ अबू बकर जुणजो मां अगवा कयो वियो। मेडिकल खां पोइ निगरनि खे वमन पुलिस हवाले कयो वियो आहे। दहशतगर्दी एक्ट तहत निगरनि जे अगवा जो केस दाख़िल कयो आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: सामीन नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
4: जदें माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो।
5: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ 13 अप्रैल से एक मुहिम शुरू हो रही है, 2 कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सुनी

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क।

कंहिं बि मुल्क़ ख़िलाफ़ एतिहाद थियण न अपने ख़ुशहाली करण आहे। रूस ऐं चीन गडि॒यल क़ौमनि शिंघाई तावन तंज़ीम जड़नि प्लेट आलमी ऐं इलाक़ाई मसला हल करण लाइ कम कर ऐं सिंधड़ी भरिसां बसनि जे परणे तां पलांद में अगवा कयल टे निगरियूं बाज़ियाब। पुलिस मूजिब घोट बाज़ियाब करायो वियो आहे। निगरनि खे ॿ ॾींहं अॻु घोट अबूबकर जुणे जो मेडिकल खां पोइ निगरनि खे विमेन पुलिस हवाले कयो वियो आहे।

0: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अगर फिरदौस बरूए जमी अस, हमी अस तो हमी अस तो हमी अस, ए कश्मीर जन्नत नजीर।

0: देखिए मोहब्बत की आखिरी कहानी मंगल रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस पर।
1: का जाम हर पल फन जी एफ एम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
2: ये

0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: इट्स 1 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: मल्टी डोमेन ऑपरेशन एट एनी फोजन में गरल सहकार तेजोर भरियो।

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हिकड़ी जे दौरे ते क्वेटा पहुची वियो। एयरपोर्ट ते गवर्नर जाफर खान बदुखेल वज़ीर-ए-आज़म जो आदर भाव कयो। वज़ीर-ए-आज़म नेशनल एक्शन प्लान जे सूबाई एक्सपेक्स कमेटी जे इजलास जी सराहत कंदो। वज़ीर-ए-आज़म क्वेटा में सूबाई क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो, अहम फैसला कया वेंदा।

0: अमरीका सां ॻाल्हियुनि जो मक़सद हथियार फिटा करणु नाहे। ईरान जे मफ़ादनि, इज़त ऐं वक़ार जो तहफ़ुज़ कयो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पशान चयो आहे त ईरान कंहिं बि सूरत में ईरान ऐं ईरानी अवाम जे हथनि तां हथ न खणंदो। समूरी तवानाई सां गॾु ईरानी अवाम जी ख़िदमत कंदा रहंदासीं।
1: ईरानी फ़ौज जो हथ बे ट्रिगर ते आहे। हमिलो थियो त वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी। ईरानी ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड जो चवणु आहे त ॿीहर हमिलो कयो वियो त ईरानी फ़ौज ट्रिगर दॿाइण जे लाइ तयारु आहे। तकिड़े फ़ैसिलाए ते ताक़तवर ऐं वॾे पैमाने ते जवाबी कार्रवाई कई वेंदी। ईरानी अवाम जो हर सतह ते दिफ़ा यकीनी बणायो वेंदो।
0: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कतरी हम मनसब सां फोन ते राब्तो। बतरफन नागपन ने विचोपर जे तब्दील थींदड़ सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल। ॿिन्ही अॻवाणनि जो खिते जे अमुन ऐं इस्तेकाम लाइ सफारती कोशिशूं जारी रखण ते ज़ोर। शहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तान खिते में चढ़दार अमुन जे क़याम लाइ सफारती कोशिशूं जारी रखंदो।

रूसी सदर व्लादिमीर पुटिन ॿिनि ॾींहनि जे दौरे ते अॼु चीन पहुचंदो। रवानगीअ खां अॻु मीडिया सां ॻाल्हाईंदे रूसी सदर जो चवणो त रूस ऐं चीन जा मज़बूत लाॻापा आलमी सतह ते इस्तेहकाम जी ताक़त बणजी चुका आहिनि। मॉस्को ऐं बीजिंग जो मक़सदु कंहिं बि मुल्क ख़िलाफ़ इतिहादु ठाहिण न पर आलमी अमन ऐं खु़शहाली जे लाइ गॾियल सहकार करणु आहे। रूस ऐं चीन गॾियल क़ौमुनि शिंघाई तआवुन तंज़ीम जहिड़नि प्लेटफॉर्म्स तां गॾिजी आलमी इलाइक़ाई मसइला हल करण जे लाइ

0: कम कर रहा है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायन सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। पाकिस्तान में 13 अप्रैल से एक इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नस्लन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन एंड कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
6: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
7: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। GAFM की आवाज,
6: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।

पास तो अल्लाह है। संजय दंदर सभी समातन फिर मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम। पुरकुले दुआओं के समान है जादू की बारिश और लाजवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नींद से जागकर जमीन से आसमान तक जिंदगी से मौत से चांद से तारों से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे तो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जनाब सो आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन बेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। ओके जनाब सो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो इनके बारे में अगर आप नहीं जानते इनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो भाई इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाता है कि किस तरीके कार को फॉलो करके आप ना सिर्फ अपनी खूबसूरती को जो है ना वो बढ़ा सकते हैं बल्कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल भी रख सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आपकी खूबसूरती बढ़ती रहे आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाए तो आपको हम बताएंगे कि क्या तरीके कार फॉलो करके कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाएंगे और आप खूबसूरत और पाले पाले बनते जाएंगे। ओके जी तो सब कुछ बताएंगे लेकिन कितना कितनी जल्दी क्या है अभी तो हमने स्टार्ट किया है तो बिल्कुल ही जरा अपना तारीफ करवा देंगे लिसनर्स फॉर रीसेंट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान नाम तो सुनाई होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मुखातिब हो चुकी है। हाँ जी जनाब प्यारे से प्रोग्राम में आप लोग प्यारे प्यारे लिसनर्स के साथ साथ आपको प्यारा बनाने के लिए उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप हमारे शो सुन रहे हैं तो जनाब अपने होने का एहसास दिलाएंगे और साथ ही साथ अपने हालचाल बताएंगे। सो डियर लिसनर्स अंत की हालत है कैसे ही आपकी हालत है उम्मीद है शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है फाइनली यहाँ पर आपने एंट्रियां मार ली। आपको पता है ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक। तो यस आप हमारे साथ मौजूद रहिए और बताइए कि आप भी हमारे साथ कहां से सुन रहे हैं ये भी मुझे पता होना चाहिए। ओके जी और यहां पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने काम के दौरान हमें सुन रहे होते हैं बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे ऐसी बहुत सारी आंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भाई अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सदरा अली बोस आपके होंठों पर 440 उल्के संभाल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के संभाल लाते और यहाँ पर आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं जी आगे से प्रोग्राम करते बहुत ही प्यारे से कलाम के साथ कलाम सुन के उसके बाद ना हम जैसे ही वापस आप लोगों से मुखातिब होते हैं तो आज के प्रोग्राम में क्या होगा ये जरा आप लोगों को बताएंगे। तो सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए क्योंकि आपका हमारे साथ पूरी 3 बजे तक है।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. JKD Kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: This program is brought to you by
5: Jadeh maa panjo khyal rakhandi aahe, ta sehat nasalan tahi halandi aahe. He pegam Kash Foundation and Canadian Government je tarfaan pesh kayo vayo.
6: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ 13 अप्रैल से एक मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
7: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए एफएम नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

0: जब दिमागी नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: के भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारे को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: इस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 पोलियो की मुहिम आने वाली है। इसमें मैं बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

अॼु मूं ट्राए कई, कोशिश कई त प्रोडक्ट जे बारे में तव्हांखे ॿुधायां, त थोरो अलॻि ॿुधायो, अलॻि तरीक़े सां. रोज़ तव्हांखे उर्दू में ॿुधाईंदी आहियां, अॼु मूं सिंधी में ॿुधाए छॾियो, समुझो था. जीअं सभिनीनि खे ॻाल्हि सम्झ में अचे, उन्हनि माण्हुनि खे जेके सिंधी सम्झंदा आहिनि, सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि, असांजा सुहिणा सिंधी आहे. हा बाबा, वाइट एस ब्यूटी क्रीम जेका न हिनजे, उहा एलोवेरा ऐं खीर बि अथसि, इहे टई चीजूं अथसि, टई चीजूं मिली करे तव्हांजे लाइ वाइट एस जी क्रीम ठही अथव. सो लॻाइजो सही आहे.

love this song. ओके जी, बिल्कुल आप हमारे साथ मौजूद हैं और ये दर्दी दिल कहती हैं कि सिदरा मीरपुर खास में वाइट एश नहीं मिल रही। बिल्कुल, ये बात मैंने आपकी कल बोली थी मेहर इरफान सियाव साहब को, उन्होंने कहा था कि जल्दी हम मीरपुर खास में अवेलेबल करा देंगे। जहां जहां पर अवेलेबल नहीं है तो आप बता दिया करें ताकि हम आपके एरिया में अवेलेबल करा दें, क्योंकि हमें आप लोगों से मोहब्बत है, हम चाहते हैं कि आप सारे लोग खूबसूरत हो जाएं। ठीक है, और ये हमारे साथ हमारी नोरी मौजूद है। हेलो हाय प्यारी सिदरा, कैसी हो? शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत सालों के बाद शो सुन रही हूँ, आपका आवाज बहुत अच्छी है। मैं नोरी कराची से सलाम सबको। वालेकुम अस्सलाम जानू।

वैसे ये गाना वैसे ही लगाया है मैंने, ऐवें ना समझो कि कोई रूठा है सुधरा से। अरे ना भाई, अपने फेवरेट गाने सुनने के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई अगर ये वाला मोमेंट हो जाए तब हम अपने फेवरेट गाने। हुआ है जी, ये मुझे भी समझ नहीं आई इस व्हाट्सएप वाले कमेंट किया, और किशोर भाई कहते कल मारने का कमेंट इसी खबर में। वाकई बाबा मानन के मुझे परवाह थव ये समझो तब अच्छा लई आसा जी। हजार खान भाई कहते वेलकम टू शो, लाजवाब है आपका व्हाइट एश ब्यूरी क्रीम एंड डी स्किन प्रोग्राम गुड है। हाओ दाई बुदा कहते अदी हम एसी और नींद छोड़कर आपका शो एंजॉय कर रहे हैं, मजो इन वाला मुंड्रा करे चाह कंदो।

ब्यूटी प्रोग्राम व्हाइटिश एंडी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से लगा दी जाइए खूबसूरत होती जाइए। अच्छा निदा कहती है कि कसम से मेरे साथ सुबह ही ये सीन हुआ था, मैं अपनी ओल्ड पिक्स वीडियोस देख रही थी और सोच रही थी वक्त के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है, पहले कैसे थे और अब देखो कैसे हैं। तो ऐसा ही है भाई, ये बात जो है ना मैंने मतलब देखकर और समझकर ये टॉपिक आप लोगों से पूछा क्योंकि ये ऐसा हुआ है मेरे साथ। अच्छा चाचा खालिद कहते हैं मुझे तो अपनी पुरानी तस्वीरें बहुत अच्छी लगती हैं, लुकिंग क्यूट यंग एंड स्मार्ट, योर टॉपिक आंसर कहो तो। नहीं नहीं नहीं रहने देते, आप हमें चाची के लुक में अच्छे लगते हैं।

0: राजू भाई कहते टॉपिक अदी, मैं सच में क्या बताऊं आपको, मेरी पिक्स तो पूरा घर देकर मुझे तंग करते हैं और मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं। और हजार खान भाई तवा के शो वड़े तो मोहबतू मोहबतू लाड़काने वाला मानू वाकई सोड़ा हुंदा छो तो लाड़काने में वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलन था तवा जे भी एरिया में मिलन था जदे तवा थोड़ो हथ पेर हणदा आई तवा नंबर ते रातो करे उनन के बुधाइंदा त बाबा तवा भी अवेलेबल करण चाहियो था पानी करीबी जनरल स्टोर ते जे तवा भी लाड़काने वारन जिया सोणा थी वजे तो नंबर दवा 03-15-799-0595 नंबर ते रातो कयो सही आ हलायो सहर अपियो मारी दसियोस
1: थोड़े मानू के ना घुमड़ी हूं दुआ हथ लाइण ते बीच न दोआ
0: केड़े गाने कटते आ बुदायो
1: लाइण ते बीच न दोआ वेजो न दोआ बहाना कंदोआ
0: अच्छा ऐसे नाल बाणिया में सुन रहे हैं वाले

ठहंदो आहे बाबा, ठहंदो आहे ओके साईं। वाह जो गानो हलायो तुम। वासा भाई हमारे साथ मौजूद है। वासा भाई हेलो, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मजे में प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको वेलकम कहा जाता है। और ये जी हमारे साथ हैं हालार अहमद भाई, आपको भी वेलकम करते हैं। माना करे हर हर प्यो मारी दो। दर्दी दिल आपको भी वेलकम करते हैं।

0: अच्छा वैसे बहुत ही प्यारा गाना है ये, जिस गाने के ऊपर बना हुआ ना वो गाना मेरा बड़ा फेवरेट था किसी टाइम में। हम बंजारों की बात मत पूछो जी, जो प्यार करे सो प्यार करे, जो नफरत की सो नफरत की। ॾाढो वीआईपी गानो आहे। हुन गाने जी कट ते पर मूंखे हिन महिल ताईं कंहिं कोन ॿुधायो, लॻे थो तव्हांखे जेकॾहिं गाननि जी कट करण न थी। प्रोग्राम में तव्हां आसे सेकंड मौजूद रहंदा पूरी पूरी 3 बजे ताईं। टाइम थियो आहे न्यूज़ ब्रेक वठूंदा, सही आहे? उन खां पोइ जल्दी वापसी तव्हांजी मोटींदासीं। तव्हां करी न वञो, हिते वेठा हुजो मां। ओ हीअ वञी, ओ हीअ मोटा वधी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो सुनते रहिए और ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहिए, सही है? मां मोटी अचां थी।
1: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
3: इट्स 2 पीएम। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
4: जदे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
5: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
6: कातू कंदो अहम फैसला कया वेंदा।

0: पापा सब लॻाईंदा सब लॻाईंदा सभिनी खे ॿुधायां थी त तव्हां सभिनी जे लाइ अथव ऐं अच्छा हा तव्हां छा था चओ अच्छा वरियाम अली जतोई हमारे साथ मौजूद है वरियाम आपको वेलकम हो गया अच्छा हज़ार भाई कहते हैं सही आहे आदि सिंधी में ॿुधायो असां जहिड़नि खे समुझ में ईंदो हाज़िर
1: हाज़िर
0: अच्छा निदड़ी कहती है कि कोई रूट भी जाए तो मनाती नहीं शीज़ा बस अलग ही बंदी है ये हाओ लॻंदो ई आहे वाकई मां हिन प्लेनेट जी न आहियां ईअं लॻंदो आहे

जी हमारे साथ आरजे बालाज मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करते हैं। चंद्रा जी आप कैसी हैं? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? ऐसे बड़े दिनों के बाद हमारे प्रोग्राम में आए हैं, कहाँ गुम थे? अच्छा स्मार्टू गोपांग हमारे साथ मौजूद है, कंबर सिटी से हमारे शो सुन रहे हैं। वेरी नाइस शो, थैंक यू वेरी मच। आरजे बालाज कहते हैं बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज सुनी है, आपकी आवाज में दो लाइनें मेरे लिए भी बोले, जैसे हाँ ये जरूर बोलूंगी, दी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए ताकि खूबसूरत हो जाए।

अच्छा सुमाटो, ये जो आपने गाना लिखा है ना, बिल्कुल सी मैंने ये गाना देखा और ये मुमताज मुलाई की आवाज में गाना था, तो मुमताज मुलाई का हम गाना पहले सुन चुके हैं ना, तो ये वाला गाना हम कल वाले प्रोग्राम में चलाएंगे, ठीक है? मतलब पक्का वाला गाना चलाऊंगी, यही वाला मुझे याद हो बस। अच्छा तुम्हें थोड़ा याद आ रहा है अजा गल समझ आयो

मेरे बहुत ही प्यारा गाना यहाँ पर आप शमन मिराली की आवाज में सुन रहे हैं और ऐसन कहते हैं शमन जो गानो आहे। अच्छा शमन जो यो गानो ऐसन असा सुभाने बुधंदा जो ही दिल टूट वारो गानो बुधो से सनोला भिरोई हमारे साथ ही थी आपका प्रोग्राम में मोरो एफएम से सुनता हूँ हमें बहुत पसंद है कि बलूचिस्तान से हूँ सनोला भिरोई वेलकम करती प्यारे भाई को। ओके, जहाँ जहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल नहीं है तो भाईजान आपको मैं बताती हूँ बहुत मरतबा बताती हूँ कि इस नंबर के ऊपर आप रابطہ कीजिए और बताइए कि आपके एरिया में नहीं मिल रही ताकि तव्हांजे गोठ में तव्हांजे सिटी में तव्हांजे पाड़े में अवेलेबल कराई वञे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो तव्हां आराम से वही वठी अचो परचेज कयो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश भी वठणो आहे समझो था ॿई चीजू साथ में लॻायो जीअं सफ़ा साथ में सोना थी वञो नंबर आहे 03 15 799 05 95।

अच्छा पोस्ट के लाइक शेयर करना हेलो होम से जाने क्या हाल है हमेशा की तरह आज भी मियाँ के साथ साथ हूँ। आज मेरी पसंद का गाना प्ले करना मेरी पसंदीदा सिंगर का गाना आप तो जानती है ना। हाँ जी बिल्कुल जानती हूँ ये नहीं अपना गाना सुने जरा देती है बिल्कुल सिडो मुझे अपनी पुरानी पिक्स पर हंसी आती है।

मैं कांटे ज्यादा लगाती थी कांटे ज्यादा लगाती थी, इस बात पर हंसी आती है। चलिए हमारी प्यार माधुरी बहुत शुक्रिया। रही है, वालेकुम अस्सलाम।

ગાનો હોયો મરા તા કેંજે રહે મરા યો ગાનો બા માં કોશિશ કરના મલાઈ નમ સયા ઓર યે હમારે સાથે કશ્યપ કહેતી હૈ દિલબર જાની આપ કૈસી હૈ ગુડ આફ્ટરનૂન હમ ભી અચ ગયે આપકે લાજવાબ શો મે સોંગ સુનવાના તુમ મિલે જબ સે ફીલ હુઆ તબ સે ઓકે ઓર દાદુ ખાન ઇમદાર જતોઈ અબ્દુલ ખાલિક જતોઈ હૈ મુબશ્શર હુસૈન જતોઈ કિફાયતુલ્લાહ ભી હમારે સાથ મૌજૂદ હૈ લગતા હૈ ભાઈ આપકા મેસેજ મિસિંગ પાર્ટ હો ચુકા હૈ સો આપ સબ ભાઈઓ કો વેલકમ કરતે હૈ પ્રિન્સ અહેમદ અલી રિંદ હૈ ફ્રોમ અહેમદ અબ્બાસ વાલેકુમ અસ્સલામ કહેતે હૈ ગાના ઓકે જી ગાના સુનાયેંગે ઓર લિખાએ થે છોટે હૈ ઓર હસી આતી હૈ હા ઇસ બાત પર હસી આતી હૈ કે હમ છોટે થે इरम कहती है आपी हाँ ठीक मीरपुर खास अब्दुल्ला महर है वालेकुम अस्सलाम कहते बाजी व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम की रिजल्ट जबरदस्त है प्लीज आज कोई भी शमन का गाना लगाएगा बिल्कुल जी शमन का गाना आपने सुना होगा मेरे प्यारे भाई और गोट मोहम्मद तैयब थेबू को हबीबुल्ला थेबू है ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद का गाना लगाइए ओके ओके जी लगाते हैं गोट मोहम्मद तैयब थेबू खां हबीबुल्ला भाई तुम चयो तुम्हारा शो ढो भलो है तुम दियो हाल हवाल से प्रोडक्ट बुधाया थी लगाया है कौन लगाया है अगर लगाया था तो बुधायो बाबा किथे पोतायो गाल किथे पोती जी असा अगते जिकवा ना तयो समझी सगुं त केड़ा केड़ा असा जा लिसनर आहन जेके ही प्रोडक्ट लगाइन पया जेके मैं ताके बुधाया पई तो वाइट एज जा प्रोडक्ट आहन उन खा अलावा डी स्किन जा प्रोडक्ट आहन तमा पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो वन्यो उता वनी परचेस करे अचो आई पोए लगायो कोई सुना सुना थी वनो टाइम तो है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठु था वापसी जल्दी मोटी तमारी इंदासी तमा करे न वंजो इते बैठा हो जो मा ओही वनी ओही मोटा थी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड by White Age Beauty Products and Skin Beauty Products.

0: ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क,
2: GFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: मेरा नाम डॉक्टर आफ़ताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। पाकिस्तान में 13 अप्रैल से एक इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीम 5 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: This program is brought to you by
0: तई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।

आप लोगों के पास और ओके जनाब, सो आप लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि क्या आप अपनी पुरानी तस्वीरें देखकर हंसते हैं, क्या आपको खुद पर हंसी आती है, बताएं जरा। और इसके साथ साथ आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं भाई, आपके बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं, आपके दोस्तों को भी मेंशन कर दिया करें ताकि वो भी जान सके कि भाई जान खूबसूरतियां इस प्रोग्राम में आप लोगों को मिल रही है। वो ऐसे क्योंकि आप अपने करीबी जर्नलिस्ट पर जाते हैं, वहां से जाकर आप जो है ना दी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करके।

पे वो जो होता था तब फैशन कैसा होता था, कैसे बनाते थे, उनका जो लाइफ स्टाइल था वो आज के टाइम से देखा जाए तो मुख्तलिफ था। और सच्ची बताऊं तो मुझे वो जो ओल्ड वाला टाइम था ना वो बड़ा अच्छा लगता है। टेक्नोलॉजी इतनी खास पसंद नहीं आती, तो पता नहीं ये क्या लॉजिक है कि मुझे ऐसा लगता है कि माँ काश पुराने दौरे में पैदा।

आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी महसूस हो जाएगा कि आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाएं। शहबाज हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आज बलाज कहते मैं भी लगाया, बिल्कुल तमाम भी लगायो बाबा, पाड़ी वारन के, मिटन माइटन के, दोस्तन के, सबनी के बुधायो, घर वारन के बुधायो, तो हू भी लगाए डी स्किन ब्यूटी क्रीम जैसा सोना थी वन।

अच्छा, ये जो मुझे लोग कह रहे ना कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम हमारे एरिया में नहीं मिल रही, असांजे ॻोठ में ना आहे, सिटी में ना आहे, त तव्हां सभु कन खोले ॿुधो, हिकिड़ो नंबर तव्हांखे ॿुधाईंदे, नंबर ते तव्हां राबितो कयो, सही आहे, कॉल कयो या फिर मैसेज कयो, हुननि खे ॿुधायो त तव्हां किथां खां असांजो प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो ऐं किथां खां जेको आहे न तव्हां प्रोग्राम ॿुधी करे चाहियो था त बाबा असांजे बि क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल हुजनि, त तव्हां डायल कयो 03-15-799-0595 03-15-799-0595 ही नंबर डायल कयो जे तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि अवेलेबल थी वञे ऐं वाइट एज जा प्रोडक्ट बि अवेलेबल थी वञनि, सभु मिलनि बाबा, सभु वठो। और ये अनवर भाई हमें सुन रहे हैं, अनवर भाई वेलकम करते हैं आपको, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ साथ, और हिदायतुल्लाह क्या कहते हैं?

अच्छा तारिक खान हमें सुन रहे हैं, तारिक आपको वेलकम करते हैं। और हैंची आदिल हुसैन कहते वाओ नाइस सॉन्ग, थैंक यू। जहीर अब्बास हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई। मुमताज वाले का गाना आपने सुना होगा, आपने प्रोग्राम में लगा लिया है। और हैं जी दर्दी दिल कहती हैं कि टॉपिक मुझे बहुत हंसी आती है अपनी पुरानी फोटोज देखकर, सबसे ज्यादा अपने बालों पर हंसी आती है। क्यों ऐसा क्या था बालों में? और उन्होंने खाना वही गानों लगाए हो था।

चीनी आदत छा अहिड़े माहौल में उन अहिड़ियुनि चीज़ुनि जो ज़िक्र करणु मतिलब मुनासिब लॻे थो. सो इन्हनि चीज़ुनि जे करे बसि मूं शायदि इन चीज़ खे थोरो आनियर न कयो. बाक़ी जेको अफ़सोस हिकिड़ो माहौल हुन हिसाब सां थोरो मां सोचींदी आहियां त इहे सभु चीज़ूं जेके न त थोरियूं इंसान खे ख़्यालु करणु घुर्जे. मूं अगरि पर्सनली ॾिठो आहे या ॿुधो आहे, अगरि मां किथे अहिड़ी शइ ॾिसी वठंदी आहियां ॿुधी वठंदी आहियां त मूंखे पाण खे सुठो न लॻंदो त मां इहो सोचींदी आहियां त अगरि मां इहो ॿुधो त लॻंदो, समझो था.

वाइटिश ब्यूटी क्रीम जो जेको आहे के वधाईंदा ऐं हिन खां अलावा वरी इनशाला सुभाणे तव्हां सां मिलण वारो आहे सो पंहिंजो उहो ई सरो ख़्यालु रखंदा किथे का ग़लती थी हुजे त मां माज़रत कयां पई सही आहे सो मोकिलींदी आहियां बाबू सां सलामत सां सलामत अलाह हाफ़िज़ बाय बाय लव यू ऑल एंड

0: Network. Network. Sinti Awaaz. हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
2: अवहां जी स्किन डल ए बेरो

0: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर छंछर ते सुबुह 9 खां शाम जो 5 वॻे ताईं इदनान दवाखाना नर्द अची मस्जिद दर्श रोड मोरो। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0301-46-459। खात्मा दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी जिंदगी। जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर छंछर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं इदनान दवाखाना नर्द अच्छी मस्जिद दर्श रोड मोरो। राब्ते लाइ फोन करियो 0301-46-459। निजात बवासीर कोरस, सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: क्या देख रहे हो?
2: आपकी तेज तरीन हो जाएगी इंशाल्लाह। स्किन की मुलायमत और खूबसूरती के लिए आपने बादाम के चेहरे से अपने स्किन की मालिश करनी है और रात को सोने से पहले करनी है। मालिश करने के बाद आपने सो जाना है और सुबह उठ के जो है आपने अपना चेहरा वॉश कर लेना है। इससे आपकी स्किन साफ शफाफ हो जाएगी, दिलकश और खूबसूरत हो जाएगी। और अगर किसी के साथ मसला है, आंखों के गिर्द स्याह हल्के हैं, तो डार्क सर्किल्स दूर करने के लिए रोजाना रात को बादाम के तेल में पिसे हुए लीमू के छिलके का सफूस मिलाकर इसे अपनी आंखों के हलकों पर अप्लाई करें और सुबह चेहरा अच्छे से धो लें। चंद ही हफ्तों में कंटिन्यू जब ये आप अमल करते रहेंगे तो आपके हलके हमेशा के लिए आपकी स्किन से 9-2-11 हो जाएंगे। और बहुत से लोगों को हेयर फॉल प्रॉब्लम है, बालों की लंबाई, घनेपन, दिलकशी के लिए आपको बताती चलूं कि आप बादाम का तेल, कैस्टर ऑयल और एलोवेरा का गूदा, इन तीनों चीजों को मिक्स करके, इनका मिक्सचर बना के बालों में अच्छे से इसे अप्लाई करें। इसे सर पे 2-3 घंटे अच्छे से लगे रहने दें। उसके बाद जो है

0: दो सेहतमंद जिंदगी।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम। यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हफ्ते मैंने छुट्टी क्या की, सारे के सारे मेरे पीछे पड़ गए कि आप बहुत छुट्टियां करती हैं, बहुत छुट्टियां। आप क्या मेहरान ऐलानात करके छुट्टियां करो? अक्सर कहती है गुल आपने लास्ट वीक शो नहीं किया है ना, फिर लीव पर पे होगी तो ईद आ रही है। और ठीक है, ईद तो हर साल ही आती है, अब वो बात नहीं रही ईद में, न जाने क्या वजह है, जो बचपन की ईदें होती थी उनकी तो बात ही और होती थी। कॉल लेते हैं फिर मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक भाई, कौन बात कर रहा है? खुश आमदीद कहेंगे वकार भाई, आपको क्या कहेंगे टॉपिक के बारे में, फुर्सत के लम्हात में कितनी आपकी? तो मैं तो 24 घंटे प्रोग्राम नहीं करती, तो क्या आप 3 बजे ही फ्री होते हैं, बाकी सारा दिन बिजी होते हैं, ऑल टाइम बिजी?
1: आपसे पहले 15 का, उसके बाद आपका,
0: मतलब रेडियो सुनते हैं सारा दिन? चलें अच्छी बात है, ओके।

0: कयो वियो। सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
1: ॾाढो सुठो
0: जीए FM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: सामीन और नाजरीन, मैं उमर सादिक आप से मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। और बान वालिदैन है, पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
2: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।

0: तो अठहत्तर शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेज और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे,
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: आपका और अब्बू का रिश्ता जो नहीं चल रहा, नहीं चल सकता।
1: माँ चला के आता हो ना तो लोग बेटियों के किरदार पे भी सॉन्ग नहीं उठाते।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: दिया है सिंधी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ड्रामा सीरियल मैं जमीन टू आसमान बहुत जल्द सिर्फ ड्रीम एंटरटेनमेंट पर।
1: जीए लतीफ, जीए लतीफ, जीए लतीफ।
2: सिंध जो आवाज GFM नेटवर्क। सिंध जी दिल जी मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजे गए रिकॉर्ड
1: जो आवाज GFM नेटवर्क यही सिंध की दिल ये मटेरियल FM 91.6 जो आवाज
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: वहाँ जी स्किन की बनाए फ्रेश सॉफ्ट एंड ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियण वधि का आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेको चमके हर ॾींहुं बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज़ अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

खुशखबरी हाँ अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुबतला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर

मिर्जा की हीर देखिए 8 अप्रैल से हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू सुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हेलो वर्णा, खबर नहीं मैं हर वक्त तेरी थकेला थकेला सुन दिया है।
1: तू खाइंदी इच्छा है स्कूल में बाकी बारन जी मंझन जी मानी डिठिया है।
2: सोचो जरा तुम भी थके हो क्यों।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: पहिरियों भेरो माँ थी रही आहीं ना मुझो बि इहो ई हाल हो
1: खबर ना है तुहां ही सब कुछ किया कियो नानी मां त एतरो थकी थी पवा छा कयो

0: ने बे बार जे सोचण जो वक्त अचे त बस साल तू सोच जाए बस इहा गाल कमींदी
1: जडे नई मां बणजण जो डप हुजे त कहीं पुराणी जी गाल बुधो अमल जे दौरान रत जी घटताई के भी नजरअंदाज न करियो ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन दिहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिए जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में पोलियो के खिलाफ 13 अप्रैल से एक मुहिम शुरू हो रही है दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा मियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: खुशखबरी हाँ अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बि हिकु दफ़ो आज़माए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर खां खमीस ताईं सुबुह जो 10 वगे खां शाम 5 वगे ताईं। जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंध जी दिल जी मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो लई
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 Network. GFM 88 Network. Sindh ki awaaz.

0: या है सिंध जी दिल ये मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो
2: नहीं सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ 13 अप्रैल से एक मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

शर पसंद देखिए 8 अक्टूबर से हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।

0: किया है सिंध जी दिल।
1: जताते कि मैंने पहले भी तुम्हारी दुआ कबूल की थी, तुम्हारी जरूरत पूरी की थी, अब तुम फिर आ गए हो और तुम रोज ही आ जाते हो। नहीं, बल्कि जब हम उसकी तरफ रुजू करते हैं तो वो खुश होता है। जब हम उससे दुआ मांगते हैं तो वो हमारे दुआ मांगने पर, हमारे सवाल करने पर, हमारे उसके आगे हाथ फैलाने पर वो हमसे खुश होता है। जब हम इंसानों के सामने हाथ फैलाते हैं तो वो हमें हकीर समझते हैं, वो हमें जलील करते हैं, लेकिन अल्लाह सुभान व तआला इज्जत बख्शता है। वो हमें तन्हा नहीं छोड़ता, वो हमें हमारे नफ्स के सुपुर्द नहीं करता। तो हम सब अल्लाह की तरफ रुजू करें और इस एहसास के साथ कि वाकई अल्लाह बड़ा है, सब कुछ वही कर सकता है और तमाम मखलूकात से बड़ा है। ला इलाहा इल्लाहू। और ये बात सिर्फ जबान की हद तक नहीं, सिर्फ सोच की हद तक नहीं, बल्कि हमारे यकीन में होनी चाहिए, हमारे ईमान में होनी चाहिए कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है। इसलिए उठते, बैठते, चलते, फिरते इन दिनों में तकबीरात का विर्द करते रहें, क्योंकि इन दिनों की सबसे बेहतरीन इबादत अल्लाह का जिक्र है और उस जिक्र में सबसे बेहतरीन जिक्र अल्लाह की बड़ाई बयान करना है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। न सिर्फ ये कि खुद बल्कि अपने घर वालों को भी इस पर लगाएं, बच्चों को भी याद दहानी कराएं और किसी वक्त इस बात को ना भूलें। सारी तारीफ भी अल्लाह ही के लिए है कि जिसने हमें ये इल्म दिया, जिसने हमें अपनी तरफ आने का रास्ता सुझाया, जिसने हमें बेहतरीन कामों की समझ दी। तो आइए हम देखते हैं कि साल के इन बेहतरीन दिनों में कौन से काम बेहतरीन हैं, क्योंकि अफजल दिनों में अफजल काम करने चाहिए और अफजल कामों का इल्म भी होना चाहिए। खैर और नेकी की तरफ बढ़ने की दावत अल्लाह सुबहानु ताला आपको देते हैं। इरशाद बारी ताला है,

0: अब आप सुनेंगे GFM नेट
1: भारत पाकिस्तान जी मुखलिस ऐं संजीदा गालिन वरी आछ के नजरअंदाज करे छिकतान अग्राई ऐं तशद्दुद जो रस्तो अख़्तियार कयो। हक जी जंग में पाक फौज दुश्मन खे मोटोड़ ऐं न विसरंदड़ सबक सेखारियो। हाणे दुश्मन कॾहिं बि पाकिस्तान ॾांहुं बुरी नज़र सां ॾिसण जी हिमत न कंदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज जी फैकल्टी ऐं तरबियत हेठि आफ़ीसरनि खे ख़िताब। शहबाज शरीफ चयो त पाण खे ताक़तवर सम्झंदड़ दुश्मन खे जंग खां पोइ सफ़ारती मैदान में बि नाकामी नसीब थी ऐं पाकिस्तान जो मौक़िफ़ दुरुस्त साबित थियो। दुनिया भारत जे कूड़े बयानीअ खे रद्द कयो। पाकिस्तान जी सफ़ारती कोशिशुनि जे नतीजे में अमरीका ऐं ईरान विच में जंग बंदी थी।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जी मटियार एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खा भी जाठा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है संजी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: खुशखबरी हाणे अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल नवाबशाह मरीजन जो चेकअप एंड इलाज होम्योपैथिक

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: या है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

देखिए नई ड्रामा सीरियल हम राही 27 मार्च से जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

0: ही आहे सिंध जी दिल जी मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर
1: 47 वरन का स्क्री कॉम तौर इस्तेमाल कर रहे हो आहे हाल के वधिक बर्दाश्त न तो कर सके।
2: अमेरिका से गाल जो मकसद हथियार फिटा कर ईरान के मफाद इज्जत ए वकार जो तहफुज करो ईरानी सदर मसलो है तेहरान कें भी सूरत में ईरान ए ईरानी आवाम के हक हथ न खो समूरी तवानाई से गड खिदमत कन्दा रहंदी ईरानी फौज जो हथ भी टिगर से है हमलो थो तो वे पैमाने से जवाबी कारवाकड़ी फैसला ताकत
1: हम सब सा फोन से राबतो भी हमने विच ओवर की तब्दील थन्दड़ सूरत हाल से ख्याल की डे वो तो पाकिस्तान खिते में जटादार अमन की क्याम लाए सफारती कोशिशों जारी रख
2: सिंध में पानी की शदीद कोट बावजूद पंजाब तरफा गैर कानूनी लिंक कैनाल जरिए पानी खड़न जारी सिंध जहा चूंडल नुमाइंदा
1: भारतीय हामी खारजी दहशतगर्द मारजी वाया एस पी आर मूजिब उत्तर वजिस्तान के इलाके शेवा में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन दौरान खारजन के थाकन के असर के अंदाज में निशानो बनाया वो फायरिंग की डेवट में भारतीय हामी 22 खारजी दहशतगर्द मारजी वाया हथियार ए बारूदी मवाद व्यक्त कर
2: नेप बहरिया टाउन 2 में 3150 एकड़ जमीन का कब्जो चलाए वरतो डीसी मलि नेप की हिदायत से मलिक ब्यास के अली इलाके भी सील कर छो नेप तर्जुमान मूजिब बहरिया टाउन 2 के 3150 एकड़ जमीन मुंजमद कई वही है जमीन एमएस पैराडाइज रियल एस्टेट धोखे से खरीद कई हुई
3: लोगों को मौजूदा जमहूरियत के सम्राट मुंतकिल करने का जो वाहिद टूल है वो एक एम्पावर्ड इफेक्टिव फाइनेंशियली इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। अगर उस पर बात की जाएगी तो यकीनी तौर पे हम जो है वो उस पर सपोर्ट करेंगे।
4: देखिए एमकेएम भरपूर साथ देगी 28वीं तरमीम का जो सूबाई हुकूमत है तो टोटली फेल हुई हुई है।
5: ये गालियों कितने देर जो खबर ना है तो ये गालियों क्यों तो देखो टिप्पणी कर सकते
6: एक मिनिस्टर कहता है 28वीं आईनी तरमीम पे काम हो रहा है लॉ मिनिस्टर कहता है ऐसी कोई बात नहीं
7: सोशल मीडिया पे ऐसी अहरी गाल सामू आई कहने का अगर ईंदी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजी अवाम से बीठी हूँ जैमें अवाम जो मफाद हों
1: पीपल्स पार्टी 28 आईनी तरमीम के मीडिया जो खबरों करार दे छो एमक्यूएम पारा मकानी इदारन के खुद मुख्तियार बनाने वाले शिक शामिल होने की सूरत में तरमीम की हिमायत जो ऐलान केटीएन न्यूज से गालंदे पीपल्स पार्टी एमपीएस 28 आईनी तरमीम जो को भी मसवदो सामने ना आयो यह तरमीम अजा तीन मीडिया की खबरों से महदूद है तबसरो कजे एमक्यूएम अगवान 28 आईनी तरमीम में मकानी इदारन की शिक शामिल होंगी तो उन हिमायत कंदा
8: पहिरां ई चयो त कुझु न कुझु थींदो 28वीं तरमीम थींदी या निज़ाम तब्दील थींदो या मां इहो चयो त माशाला लॻी सघे थो यकीनी तौर ते कुझु न कुझु लॻे थो त थियणो आहे गैप जो लमा अलाह खे आहे छा थियणो आहे उहा ख़बर ख़ुदा खे पर 28वीं तरमीम निज़ाम जी तब्दीली या ॿियूं ॻाल्हियूं सभु हलनि पियूं हाणे फ़ैसिलो उन्हनि ते करणो आहे जेके असेंबलियुनि में वेठा आहिनि असां असेंबलियुनि में त आहियूं कोन बार त उन्हनि ते आहे उन्हनि जी सपोर्ट सां पास थींदी उन्हनि जी सपोर्ट सां पास कोन थींदी उहो कहिड़ो फ़ैसिलो था कनि उहा ॾिसण वारी ॻाल्हि आहे।
2: 28वीं तरमीम थींदी निज़ाम तब्दील थींदो या वरी माशाला बि लॻी सघे थी 28वीं आईनी तरमीम बाबति फ़ैसिलो पार्लियामेंट में वेठल माण्हुनि खे करणो आहे असां पार्लियामेंट खां ॿाहिरि आहियूं नशर फिरोज़ में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे गुणे फाकी वज़ीर मुर्सा जतोई चयो आहे त अपोज़िशन जी सूरत हाल ते नज़र आहे हिकमत अमली जोड़ी आहे ज़ाहिर नथा करे सघूं सिंध खे माफ़िया खां आज़ाद कराइण वारी जिदोजहद जारी रखंदासीं मुर्तज़ा जतोई ऐं संदसि भाउ ख़िलाफ़ 8 केसनि जी ॿुधणी 11 जून ताईं मुलतवी
1: भारतीय जहाजन लाए पाकिस्तानी हवाई हदू इस्तेमाल करण ते लगायल पाबंदी में वाद पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी मूजिब हर किस्म की भारतीय जहाजन लाए हवाई हदू इस्तेमाल

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे लकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: फिर गुलाम की है बादशाह
1: गुलाम पिछाड़ दिल जाने दिल जाने दिल जाने।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू सुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नई का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे हकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढा मियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर था भी दाधा नियर नहीं सकी करो
2: नहीं। आज भी सिंध की है ये एफएम 88 नेटवर्क। ये एफएम

देखिए नया ड्रामा सीरियल छुप छुप के फर्स्ट रमजान से रोजाना रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस पर।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी करो
2: लई। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

देखिए ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा मियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवा के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जे करे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप एंड इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, एमसीबी बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244770।

0: किया है सिंध जी दिल। जीए मटियारे
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर। अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: आप सुन रहे थे वाला लाल कश्मीर वासन जी इलाकी सियासी ऐं सफारती हिमायत जारी रखंदासीं।
3: बलोचिस्तान में जटादार अमन लाइ अवाम दोस्त पॉलिसी ऐं बहितर रुखानी अटर आहे। पाकिस्तान जी तरक्की रोकण जी कोशिश कंदड़ सदाई नाकाम थींदा। कोयटा में फौजी आफिसर खे ख़िताब कंदे फील्ड मार्शल आसिम उन्हीअ चयो आहे त हथियारबंद फौज हर क़िस्म जी दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे। पाक फौज अवाम जी हिमायत सां दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे। पाकिस्तान जी तरक्की खे प्रोपेगेंडा या परडेही सरपरस्ती में थींदड़ दहशतगर्दी ज़रिए रोके नथो सघजे। जदीद जंगी तरीक़ेकार तेज़ी सां तब्दील थी रहियो आहे। फील्ड मार्शल जदीद टेक्नोलॉजी मल्टी डोमेन ऑपरेशन ऐं चीनी फौजनि में गडियल सहकार ते ज़ोर भरियो।
2: ईरान ते ॿीहर हमलनि जी ज़रूरत पइजी सघे थी। ईरानी क़यादत डील लाइ मिंटूं करे रही आहे। डील न थी त हमलनि खां सवाइ ॿियो को रस्तो न बचंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जी व्हाइट हाउस में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल। डोनाल्ड ट्रम्प चयो त ईरान खे नवां एटमी हथियार ठाहिण लाइ वक़्त नथा ॾेई सघूं। ईरान वटि अञा बि जवाबी कार्रवाई जी थोरी सलाहियत मौजूद आहे। ईरान आबनाए हुर्मुस खे 47 वरनि खां सिकिरी क़ौम तौर इस्तेमाल करे रहियो आहे। अहिड़ी सूरत हाल खे वधीक बर्दाश्त नथो करे सघिजे।